राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए

शरीफ वांग हुंदा सी। इन्हां दे आजान ते सन्मान करने नाल अरब दे होर देशां दे आए हाजी जो हुण आले दुआले आ रहे सन अदब विच बैठ गए। गुरु जी का जवाब सुन के ते वर्त्या ए कौतक के मक्का घूम गए। सारे सन्मान करन लग पे गुरु साहब का। फिर गुरु जी दिया ते इन्हां फकीरां दिया होर अरब आदिका पीरां फकीरां दे नाल गल्लां बातां होईयां जो हिंदियां नाल होईयां।

दुनिया का असर डड है, खुदा किस तरह मिलता है। ये सुन के धन गुरु नानक साहब जी का रंग पलटे है, जिसनू उन्होंने खुदा कहा सी, गुरु दिया कोमल दिल तरबां दा प्रीतम सी, नैन उच्चे हो गए ते डाढे मिठे मिठे वेग विच अपना शब्द गाउणा शुरू कीता, जिहड़ा आप

तू वड्डा है, करीम है, दया करने वाला, बेऐब है, तेरे विच कोई ऐब नहीं, तू दुनिया नु पालन वाला है। ए दुनिया मुकामे फानी, ए दुनिया खत्म होने वाली है।

नाने की गल कहंदा है हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो अर्ज कर ओदी सिफत कर ओदे सेवका चाकरां दे पैरां दे खाक हो जा।

क्या है? एक ही घटना हो गई है, शायद मेरी अखां विच खलल आ गया है। आकाशवाणी हुई, तेरी नजर विच फर्क नहीं पिया। कब एक कमजोर तीवी नूं, एक कमजोर औरत नूं दर्शन देन गया है, उदे स्वागत ले गया है। जो इस पास से आ रही

ना ता केवल सिख ते हिंदू बल्कि मुसलमान तक अखी वेखी गल दी तरह मनदे हन जिहा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहिब बिस्मिल फिरोजपुरी अपनी एक पुस्तक विच गुरु जी दे मक्के जान दा जिक्र करदे होए

तेरा मानिंदे आईना है साफ। ऐ धन गुरु नानक साहब तू ओ कब आए के कब बेने भी तेरा सत्कार।

एक ग्रह लभने ओद होर ग्रह निकल आंदा ओनू लभने ओद होर निकल आंदा है। पर तन गुरु नानक साहब ने कई सौ साल पहले ही यह कह दिता पाताल पाताल लख आगासा आकाश एक कोई धरती कोई आकाश नहीं होर भी बहुत कुछ है लखा ही आकाश लखा पाताल खंड ब्रह्मांड नहीं जिदा कोई अंत नहीं पा सकता और साइंस इस गल

कटोरा समंदर में सुट दिता, कटोरा डुब गया। वो लड़का टप्पण लग पया, खुशी नाल नचन लग पया। फकीर कहन लगा, काका कटोरा तेरा डुब गया।

मैं घरों कटोरा लेके आया, किस कटोरे विच समुंदर दा पानी भर लवा। सवेर दा लगा सी पर कटोरे विच सारा समुंदर मैं ना भर सके। तेरे ख्याल आया जे कटोरे विच समुंदर दा पानी

जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र गोद का निग मान रही गुरु रूप साध संगत जीओ सनिमर फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का ही कीर्तन दरबार जो नवे साल की आमद से करवाया जा रहा है, इस विच रूहानियत दे सोमे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर के हजूरी रागी जत्थे आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। आओ कीर्तन का आनंद प्राप्त करिए। मिल रही है प्रभ साध जना, मिल हर कीर्तन।

सच दे रस्ते ते तोर के अनेकां जीवां दा उधार कीता। एथे ही बस नहीं गढ़ बगदाद जो पीरां दा गढ़ सी, उस बगदाद विच भी जाके आपने सच दा उपदेश दिता। आख्या अकाल पुरख दी लीला दा कोई अंत है, तुसी क्या ए सच मनदे हो? सत पताल ते सत आकाश हन, इस तो परे होर कुछ नहीं। बाबे ने आख्या नहीं, लख पाताल आकाश लख, लखा ही आकाश हन, ते एथे ही बस नहीं, फिर पता नहीं कितने को होर भी हन। ते बाबे ने अपनी अजबत ते नाल ओ लखा पताल ते लखा आकाश अखी विखा के अकाल पुरख वाहिगुरु दी बेअंत लीला नू प्रत्यक्ष करके दिखाया। सारा बगदाद आप दे चरना ते झुकिया, मदीने ने आप जी दे चरना ते सजदा कीता, मक्के विच जाके सच दा राह दर्शाया। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह ए रमणन करके ते फिर अज किथे पहुंचे हन। भाई साहब गुरदास

बड़ा दुख होया मन बड़े क्रोधित होए मन विच रिसक गनेरी खाई आख्या ए किधरों आ गए हन भगतियां पाई भगत आन लोटा जोगी लिया छपाई बाबा जानी जान पुरख कढ़िया लोटा जहा लुकाई वेख चरित्र जोगी खुन साई ए चरित्र वेख के योगियां ने बड़े मन विच क्रोध कीता रास तारियां ने आके रास पाई ते जो लोग खुश होके इन

फिर उदासियां वाला भेक बनाया ते हुण फिर संसारी कपड़े पहन के इत्थे बैठे हो। तुहाडा की धर्म है? भाई साहब गुरदास जी लिखदे हन, खादी खुणस जोगी सरा, गोश्त करन सबे उठ आई, पुछे जोगी भंगर नाथ, तोए दुध विच क्यों कांजी पाई, फिटिया चाटा दुध दा रिड़कियां मक्खन हाथ ना आई, ते इस दा भाव की सी, आख्या पेख उतार उदास दा वत, क्यों संसारी रीत चलाई। उदासियां वाला साधुआं वाला पेख लहा के तू फिर संसारी कपड़े पा ले हन, इस तो भाव है कि फिटिया चाटा दुध दा रिड़कियां मक्खन हाथ ना आई, पेख उतार उदास दा वत, क्यों संसारी रीत चलाई। इसका जवाब दियो, तां गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता, नान

बाबे ने आख्या ओए चंद्रया असी कुछ तेरे कोलों मंगण नहीं जे आए असी ते तेनू प्यार करके तेरी मित्रता करके तेनू मिलन वास्ते आए हैं। बाबा जानी जान है बाबा ते लोक परलोक दी सोझी रखदा है बाबे दे ओले की हो सकता है। गुरु नानक दरवाजे ते खलोते आवाजा मार रहे ने ओए मित्रा चंगा तू मित्र है किन्नी प्यार नाल तैनू मिलन आए हां ते तू अंदर लुकिया बैठा है। संसार है घर परिवार दे आखे लग के ए जीव कई बार बुजुर्गां दे नाल इहो जिहियां गल्लां करदा है पर सतसंगियो बाबा नंद सिंह जी बख्शिश करदे सन जिहड़ा इंसान अपने बुजुर्गां दा सत्कार नहीं करदा बुजुर्गां दी संभाल नहीं करदा वो कदी भी गुरु नानक दी नजर विच बख्शिया नहीं दे जांदा।

अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो।

निवाजू ही। ए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ए रब दा, वाहिगुरु दा, राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है। एक पासे कहिंदा है ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन, कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलों पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब, मेरा परमेश्वर खुश हो रहा है, अपने मन दे नाल विचार करो ते इसका जवाब खुद मिल जाएगा।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

ऐसा उपदेश गुरबाणी दा अपने धर्म च पक्के रहो। तुसे जिस धर्म नूं भी मनदे हो पर असल विच धर्मी ओ है जिहड़ा सब नाल प्यार करे, क्योंकि धर्मी किसे नाल नफरत नहीं कर सकता। गुरु घर विच सिख धर्म विच अणख नाल जीवना, धर्म दे किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना ए उपदेश है। और यही उपदेश सारिआं वास्ते सांझा है। अणख नाल जीओ, अपने धर्म च पक्के रहो। पर धर्मी होण दा मतलब ए नहीं कि आपां दूसरिआं नूं माड़ा कहीए या दूसरिआं दी निंदिआ करिए। कमियां हुंदिआं हन, पर उन्हां कमियां नूं दूर करना इंसान दा फर्ज बणदा। जिस वेले धन गुरु नानक साहब दा अवतार होया, ए झगड़े उस वेले भी सन। ते गुरु नानक साहब जी महाराज जिस वेले मुल्तान देश गए, पीरां फकीरां दे नाल ज्ञान चर्चा हुई। पीरां फकीरां ने गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई। वड्डा सांग वरताया, लख न सके कुदरत कोई। धन गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, ऐ बाबा नानक, तू सारिआं दा सांझ है, तेनू मुसलमान भी मनदे ने, तेनू हिंदू भी मनदे ने, पर सानू इक गल दा जवाब दे।

गुरु साहबाने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि यह इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई, आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए और यह जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां देईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा ओहदा